0: यो हो एनबी रेडियो नेटवर्क www.nepalbodh.com। म्यूजिक नेपाल।
1: मेसना डिजिटल प्रस्तुत गर्दछ।

0: यो हो एनबी रेडियो नेटवर्क www.nepalbodh.com।
1: मेडियामा म्युजिक प्राली प्रस्तुत गर्दछ।